आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
3: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइस और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
2: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
3: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
2: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
4: This is Deepika Padukone.
5: Deepika Padukone.
4: Radio Olive 106.3.
6: I'm in number one. Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
8: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा, गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, मैरियट मार्की सिटी सेंटर, दोहा। कम एंड डिस्कवर फेस्टिव फैशन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडिट। Drive the Dream has arrived at Abu Sidra Mall. Just spend 100 Riyal, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
2: Plus 1 lakh Riyal in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
1: Offer valid till 16th March 2027.
2: Hurry to Abu Sidra Mall, grab your coupon and win your dream car.
1: Drive the Dream, only at Abu Sidra Mall.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कूल सॉन्ग
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: कूल सॉन्ग

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तुमने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दोहा, गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October, 11 AM to 8 PM, Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion ka extraordinary edit.
2: Hi Radio Olive,
3: Radio Olive
2: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: I'm in number one,
4: Radio Olive. Olive Sunil Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network. You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अब उस सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपनी ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Doha, get ready for the festive exhibition by Boutique Edge, जहां दुनिया भर के renowned designers और labels एक ही roof के नीचे with original and affordable price range. Meet the designers bringing their latest collections, Sana Safinaz, Zaira Rizwan, Komal Lakhani and a lot more. 3rd October, 11 a.m. to 8 p.m. Marriott Marquis City Center, Doha. Come and discover festive fashion का extraordinary edit.
2: Hello, मैं हूँ नीना गुप्ता.
3: नीना गुप्ता.
4: सुन रहे हैं
5: रेडियो ऑलिव 106.3. ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ऑलिव, आवे नंबर वन।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: देखिए जी, ढिंचैक पूजा का गाना और वीकेंड के बाद ऑफिस आना किसको ही पसंद है। एटलीस्ट मुझे तो देखो बिल्कुल नहीं पसंद। एक ही अच्छी चीज होती है वीकेंड के बाद ऑफिस आने पर, वो है मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है। बस इसीलिए मैं आ जाती हूँ, बाकी आप लोगों की लाइफ में वही मोटिवेशन वापस आ जाए, बस इसीलिए अपना शो लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। अब देखिए, आज जो है बहुत अमेजिंग वाली बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, बहुत मस्ती मजा फन फॉलिक करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बस आपको वॉल्यूम बढ़ाकर जो है अमेजिंग वाले गानों के साथ मेरी आवाज को इंजॉय करते रहना है। एंड बाकी आपको भी मैं काम दे रही हूँ, 3311063 पर मैसेज कर दीजिए मुझे और ये बता दीजिए कि यार आपका वीकेंड कैसा रहा, क्या हाल चाल है आपका। बाकी बातचीत जो है वो तो हम करते ही रहेंगे। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: The temperature

0: मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद

0: कल फाइनली मुझे ऐसा लगा बाहर जाकर कि यार अब वो मौसम आ गया है जब जो है बाहर जाया जा सकता है और ना वो इरिटेशन नहीं होगी, वो ह्यूमिडिटी नहीं होगी और वो चिपचिप नहीं होगी। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, 36 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सो आज टेम्परेचर जो है वो 20s में तो नहीं गया लेकिन 30s में भी कूल सा फील हो रहा है। सो इन शॉर्ट अच्छा ही लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं किस तरीके से अच्छे लग रहे हैं, एंड जो लोग में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, बहुत लंबे वक्त बिता लिया है कतर में, आप बताइए कि असल में जो बदलाव है वो कब से देखने को मिलता है, ताकि हम जैसे नए लोग जो हैं जो कतर में, वो उम्मीद लगा के ना बैठे कि कल मौसम और बढ़िया हो जाएगा। वैसे तो देखो बढ़िया जो है हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन और बढ़िया जो है वो कब से होगा ये बताओ मुझे 3311063 पर आकर। फिलहाल थोड़ी सी देर में जो है हम जो है अमेजिंग गानों के उस पर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने वाले, सो 3311063 पर कूल से प्यारे प्यारे से मैसेज कर दो। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

देखिए, पैसा, गाड़ी, महंगा घर कुछ नहीं चाहिए, अगर आप लोगों जैसे प्यार करने वाले लोग जो है वो मिल जाएं। हां जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिवर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों ने मेरी लाइफ को सच में मस्त बना दिया, क्योंकि किसी ने जो है अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन मेरी तारीफ भर भर के की है। कहा है कि कशिश आपका इंस्टाग्राम देखा, वहां पर आकर ऐसा लगा कि यार जस्टिफाई कर दिया है आपने अपनी आवाज को, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये सुन के मेरा दिल अच्छा अच्छा सा जो है फील कर रहा है, मेरा जो यू नो ऐसे आसपास ऐसे बवल से फूट रहे हैं, बादल आ गए हैं, और मेरा फोन जो है वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशंस जो है वो दे रहा है। सो आप लोग जो है वो क्यों पीछे हैं, 3311063 पर मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा फील कराते रहिए, बाकी मैं आपके लिए अमेजिंग वाले गाने लाती रहूंगी। तो देखिए, ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप जो है ये मेंटेन रहना चाहिए, बाकी थोड़ी सी देर में आपके स्ट्रेस को एकदम दूर भगाने का एक तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ आने वाले गाने, और स्टे ट्यून्ड रहो, कहते रहो जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: With Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa. Nesto, all
0: that you need. Radio Olive Pad.
2: Yeah.
0: Olive Rewind.
2: Olive Rewind. Olive Rewind. Olive Rewind.
3: Mene.

मुझे नहीं पता आप लोग ऐसा करते थे या नहीं करते थे, लेकिन मैं तो बचपन में ऐसा बहुत करती थी एंड अभी भी कभी कभी ऐसा करती हूँ कि जब मुझे जो है किसी भी छोटी मोटी एक्टिविटी में जाना होता है, इवेंट में जाना होता है या बस वीकेंड पे बाहर जाना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट तैयार होके जाऊँ, चाहे वहाँ मेरी फोटोज खींची जाए ना खींची जाए, मैं किसी स्पेशल इंसान से मिलने वाली हूँ या ना मिलने वाली हूँ, मैं बस ये ध्यान रखती हूँ कि यार खुद के लिए जरा सा टाइम निकालूँ और तैयार हो जाऊँ। जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ एयर, मैं हूँ आपकी कसोसन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, ये ड्रेसअप खेलना जो है जब से बंद किया है अपनी लाइफ में, तब से लाइफ थोड़ी ज्यादा टफ हो गई है। सो अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको ड्रेस करना होगा। हाँ जी, ये जो पहेली है ये मैं ऐसे सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए कि जब भी आप अपने फेवरेट कपड़े पहनते हैं या बस थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के तैयार होते हैं ना, आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे मेंटल स्टेट में हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो वो ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है ना, आपके दिमाग में जितना भी स्ट्रेस चल रहा होता है वो सब कम हो जाता है। सो ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि आप जो है मेकअप कीजिए, तैयार होकर जो है बाहर जाइए, हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए, ये मैं लड़कों को भी कहना चाहती हूँ कि जब आप खुद की केयर करते हैं, सपोज आपने अपनी बियर्ड जो है वो सेट कर लिया, अच्छा फ्रेश हेयर कट ले लिया, यू नो शैम्पू किया है एंड उसके बाद आप मस्त तैयार हो के आपकी फेवरेट शर्ट पहन के रेडी हो के आपका फेवरेट परफ्यूम लगाकर बाहर जाएंगे, सो ऑफकोर्स आपको अच्छा फील होगा। सो बस खुद को थोड़ी सी प्रेफरेंस दीजिए, फिर देखना लाइफ आपको कैसे प्रेफरेंस देती है। बाकी मैंने भी ऐसे ड्रेसअप खेल के जो है कुछ फोटोज जो है इंस्टाग्राम पर डाली, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं हूं आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: लाइफ अपडेट्स।
1: दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन कंक्लूड्स। द मैसिव 22nd एडिशन ऑफ द दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन 2026 रैप्स अप इट्स फाइनल डे टुडे सैटरडे अक्टूबर 3rd 2026 एट द DECC शोकेसिंग आवर 500 इलीट ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स। Al Salia Market ready for farming season. The Ministry of Commerce and Industry inspected the Al Salia Central Market to finalize operational readiness for the upcoming local agricultural season, aiming to maximize domestic vegetable supply. Gulf Cup semi-finals tonight. The Qatar national football team goes head-to-head against Saudi Arabia in a high-anticipated semi-final match of the 27th Arabian Gulf Cup tonight, Saturday, October 3rd, 2026, in Jeddah.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस।

0: वैसे जिन भी लोगों ने मेरा द टेक शो मिस किया है ना कल, उनके लिए मैं कुछ अपडेट्स लेकर आ गई हूँ जो मैंने कल बताई तो थी लेकिन आज फिर से बता देती हूँ। आप लोगों से देखो कुछ मिस नहीं होना चाहिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, एक लड़की है जिसने एक ऐसा AI एजेंट जो है वो डेवलप किया है जिसमें हर सुबह उसके पास एक पर्सनलाइज न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट होकर आ जाता है, जिसमें उसके फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट डिलीवरी डिटेल्स, सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, मेल्स जो है वो उस न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर आ जाते हैं। एंड ये न्यूज़पेपर बनाने का मेन जो एजेंडा है उस लड़की का वो यही था कि यार देखो मुझे ना सुबह सुबह अपनी फोन की स्क्रीन नहीं देखनी, ब्लू लाइट नहीं देखनी, इससे क्या होता है ना कि स्ट्रेस बढ़ता है, सो इसीलिए मैंने ये न्यूज़पेपर बना लिया है। सो बस अपनी ही सारी अपडेट्स जो मेरे फोन पे मैं देखती वो मुझे अब न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। How cool is that? वैसे अगर आपको ऐसी इन्वेंशन करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे बताइए मुझे 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas.
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: दोहा गेट रेडी फॉर द फेस्टिव एग्जीबिशन बाय बुटीक एज, जहां दुनिया भर के रेनाउंड डिजाइनर्स और लेबल्स एक ही रूफ के नीचे विद ओरिजिनल एंड अफोर्डेबल प्राइस रेंज। मीट द डिजाइनर्स ब्रिंगिंग देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, सना सफनाज, ज़ायरा रिजवान, कोमल लखानी एंड अ लॉट मोर। 3rd October 11 AM to 8 PM, मैरियट मार्की सिटी सेंटर दोहा। कम एंड डिस्कवर फेस्टिव फैशन का एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडिट।
2: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

70 मिनट है तुम्हारे पास। अचानक से ना शक्दे इंडिया वाली शाहरुख खान की याद आ गई, बिकॉज हमारी इंडियन हॉकी टीम ने जो है ऐसा कुछ करके दिखाया है। हाँ जी, आपको तो ये पता ही है कि जापान में जो है इस वक्त एशियन गेम्स चल रहे हैं, जहाँ पर कतर की टीम जो है वो भी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की बात करना चाहूँगी। सो उन्होंने ना हिस्ट्री बना ली है जापान में, मतलब जापान की जो एशियन गेम्स है उसमें चाइना को 1-0 से उन्होंने हराया है, एंड ये जो है पिछले बहुत सारे सालों में पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल होने वाला है। बहुत सारे साल, टू बी प्रिसाइज 44 ईयर्स बाद इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने जो है गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, एंड लास्ट बार जो है ये 1982 में न्यू दिल्ली में जीता गया था, एंड तब से जो है हम दो बार फाइनल में तो आए लेकिन जीत नहीं पाए। सो 1998 में एंड 2018 में जो है वो हम आए थे फाइनल्स में, लेकिन सिल्वर से हमें जो है वो संतोष करना पड़ गया, लेकिन आज जो है अब गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुके हैं, एंड काफी अच्छा खेला है। सो चक दे इंडिया, बस उस फीलिंग के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, एंड बाकी और अपडेट्स जो है वो मैं आपको ऐसे ही देती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: थोड़ी सी आपको मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. मेरे पास एक आईपैड है एंड मुझे क्योंकि यू नो कीबोर्ड यूज करना था तो मैंने उसके साथ उसका कीबोर्ड भी लिया है. लेकिन मैं टच पैड को यूज करने की जगह मैं स्क्रीन को टच करके काफी सारी चीजें कर लेती हूँ एंड ये मुझे ईजी लगता है. एंड उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस का लैपटॉप यूज करती हूँ ना तो मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं माउस और टच पैड की जगह स्क्रीन को टच करने की कोशिश करती हूँ. मतलब ब्रेन की वायरिंग वैसी हो जाती है ना, आपकी मसल मेमोरी हो जाती है कि अरे टच होकर जो है हो जाएगा. फिर मैं अपने आप को एक बहुत ही स्टूपिड सिचुएशन में पाती हूँ जहाँ पे सब लोग मुझे देख रहे होते हैं कि ये लैपटॉप की स्क्रीन को टच क्यों कर रही है. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए यार, मैक का मतलब एप्पल का फर्स्ट टच स्क्रीन वाला मैक जो है वो हमें 2026 के एंड में, यानी अब 2-3 महीने बचे हैं उसके एंड में भी पता नहीं कब, लेकिन जल्द ही हमें जो है टच स्क्रीन वाला मैक जो है वो देखने को मिल सकता है. सो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, जूम करना, कहीं पे क्लिक करना काफ़ी ईजी पड़ेगा. वैसे आप मुझे बताइए कि क्या ये टच स्क्रीन वाली जो फैसिलिटी है ये आपको चाहिए आपके डेस्कटॉप पे और आपके लैपटॉप पे भी, क्योंकि मेरे को तो देखो बहुत ज़रूरत पड़ती है. क्या आपको ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर पड़ती है तो थोड़ा हम प्रेशर बनाएंगे ना यार कि यार इसको रीजनेबल रेट पे जल्दी से जल्दी लॉन्च करो. फिलहाल जो है अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं बिना किसी भी रेट के आपकी रेडियो सेट्स पर. सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: बाबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
1: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
0: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
1: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
0: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
2: हाय गाइस, इज अबार चित्ती खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिवर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: जब भी मैं लोगों से पूछती हूँ ना कि आपका बॉलीवुड का फेवरेट यू नो सेलिब्रिटी कपल कौन सा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि रणबीर आलिया, कुछ लोग कहते हैं रणबीर दीपिका, कुछ लोग कहते हैं यू नो कैटरीना कैफ या विकी कौशल. सो मुझे जो है ये सब तो पसंद ही है, लेकिन एक कपल है जो हमेशा मुझे काफी क्यूट लगता है एंड आई मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप लाइक दैट, एंड वो है जहीर एंड सोनाक्षी सिन्हा. एंड इनकी जो है एक मूवी मैंने देखी थी एंड इट वॉज रियली यू नो क्यूट मूवी. मैं मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको समझाऊं कि वो मूवी कितनी अडोरेबल है, कितनी क्यूट है. लेकिन उस मूवी डबल एक्सल मूवी का नाम था, लेकिन उस मूवी के बाद हमें ये दोनों जो है वो साथ में नहीं दिखे. सो अब जो है तू है मेरी किरण नाम से एक मूवी आने वाली है 23rd of October को, जिसमें हमें ये दोनों साथ में दिखने वाले हैं. तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड मेरे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखे मुझे जिन्होंने इस मूवी के पोस्टर की स्टोरी लगाई है एंड उन्होंने कहा कि वो इस कपल को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं. सो आप मुझे बताइए कि क्या ये आउट ऑफ द लीग, ये यानी जो बहुत ज्यादा फेमस वाला जो कपल है वो आपको ज्यादा पसंद है, या सोनाक्षी एंड जहीर आपको बहुत क्यूट लगते हैं? बताइए मुझे 3311063 पर. बाकी ये वाली मूवी आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे बताइए मुझे. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून और कहते रहिए जियो फिदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: सर क्या पर ये बात है. Cool song.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

यार ये फिल्म मेकर्स ना पहले प्रॉमिस कर देते हैं और फिर जब ये प्रॉमिस पूरा नहीं होता ना तो काफी बुरा लगता है हम ऑडियंस को। हाँ जी वेलकम 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, स्त्री मूवी तो हमें काफी पसंद आई थी एंड उसके जितने भी पार्ट्स आए थे हमें बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब हमें स्त्री का अगला पार्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है एंड बहुत फन होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने कहा 2028 में हमें इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा एंड जितनी भी चीजें हमें इस मूवी के बारे में पसंद आई थी वो सारी हमें वापस आते हुए दिखेंगी। देखो सबसे पहली तो मुझे इस मूवी के बारे में एक ही अच्छी चीज लगी है एंड वो है श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की जोड़ी, एंड अगर उसके बाद कोई अच्छी चीज है तो वो है इस मूवी की सिंपलिसिटी, यानी फालतू के जो है ग्राफिक्स नहीं डाले हैं, फालतू की अजीब स्टोरी नहीं डाली है, सिंपल सोबर स्टोरी है, देख के मजे आ जाने वाली। वैसे दृश्यम मूवी का जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो हो चुका है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है अपना सेकेंड हैंड रिव्यू दूं, यानी मैं सोशल मीडिया से देख के आपको रिव्यू, उससे बेटर है कि हम उन लोगों से ही जाने जिन्होंने ये मूवी एक्चुअल में देखी है। तो सिम जो है, यानी हमारी जो प्यारी आरजे सिमरन है, वो देखने वाली है ये वाली मूवी, तो आपको आकर वो अच्छा वाला रिव्यू देगी। सो वेट करते हैं, सिमरन से मैं भी जानूंगी, आप भी जानना कि कैसी लगी उन्हें दृश्यम द कंक्लूजन, दृश्यम 3। बाकी हमारे कुछ लिसनर्स को भी हमने मौका दिया हुआ है सो उनसे भी पूछेंगे, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं 3311063 पर कि आखिर जो दृश्यम 3 है ये आपको कैसी लगी। बाकी स्त्री की अगले पार्ट के लिए भी आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो पिदास।

0: देखो मन तो नहीं कर रहा मेरा यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि कल लौट कर वापस भी तो आना है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे शो लाइफ मस्त है, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। क्योंकि देखो अभी मैं जाऊँगी तो कल सुबह जल्दी आ पाऊंगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जल्दी आ पाऊंगी, क्योंकि कल आप मुझे सुबह सुनने वाले हैं बिंदास मॉर्निंग पर। तो जी कल बिंदास मॉर्निंग पे सुबह 6 बजे से वॉल्यूम बढ़ाकर ट्यून इन कर लेना आपकी कशिश के साथ, बहुत सारे फन फॉलिक मस्ती मजा होने वाला है। बाकी अभी जाते जाते मैं वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना। एंड ये आपकी जो कशिश है इसे याद कर देना। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

जो मेरे पल पल में शामिल है वो

सो कुछ मूवीज होती हैं जो थिएटर से बाहर आने के बाद खत्म नहीं होती, वो दिमाग में चलती रहती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑल एवरी चार्ज। और दृश्यम फ्रेंचाइजीज उसी मूवी की, यू नो दृश्यम 3 की मैं बात कर रही हूँ। वैसे भी हमने एक अजीब सी प्रॉब्लम यू नो मूवी में देखी है। हम जब कुछ थ्रिलर सॉल्व करने के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है यार ये होगा कि नहीं होगा। सो विजय एक ऐसा कैरेक्टर जिसने हमें एक चीज तो सिखा दी कि अगर आपने कुछ प्लान करना है तो सिर्फ प्लान नहीं, बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान चाहिए आपको। दृश्यम 3 अब थिएटर्स में है और नेचुरली सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार विजय की चाल क्या है। Everybody is watching, मतलब आप जब टिकट्स बुक करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टाइम पहले तो आपको टिकट्स मिलेंगी भी नहीं, पहले से बुक करनी पड़ेंगी। सो आज सैटरडे है और बहुत सारे लोगों का प्लान होगा दृश्यम देखने का, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल स्पॉइलर नहीं दूंगी। लेकिन मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग लगती है कि हम ऑडियंस को ऐसे कैरेक्टर्स क्यों पसंद आते हैं जो मतलब मॉरली परफेक्ट नहीं होते। शायद क्योंकि रियल लाइफ में भी हर कहानी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आप बताइए कि विजय आपके लिए हीरो है, एंटी हीरो है, या बस एक फादर जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, नंबर सेम 3311063। ऑलिव रिचार्ज शुरू हो चुका है विद लॉट ऑफ एनर्जी। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान। अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में। कतर में पहली बार।
1: Hi, this is Air Rahman.
2: Air Rahman.
1: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
2: Geo Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm number one. Radio Olive.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance lekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: Let's talk about India versus Pakistan Asian Games. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम. Yes, of course, Olive Recharge. So यहाँ पर रिचार्ज होने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है क्योंकि आज सैटरडे है. So कई सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स हैं. अभी कुछ लोग घर से निकल रहे हैं या कुछ अपना हाफ डे करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ ग्रॉसरी की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ शाम के प्लान्स बना रहे हैं. So इसी सब के बीच मैं आपको बताती हूँ कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स का फाइनल है. और ऑब्वियसली आपको बताती हूँ कि प्रेशर बहुत ज्यादा है. मतलब स्कोर 10 हो या 100 हो, हार्ट बीट हमेशा फाइनल ओवर वाली रहती है. सो प्रेशर इज द मेन थिंग. यू नो, इमेजिन कीजिए स्टेडियम में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल स्क्रीन के सामने और आपके हाथ में बैट या बॉल नहीं है. एक गलत डिसीजन और पूरा इंटरनेट आपको एनालिसिस समझा देगा. मतलब एथलेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं उनको करनी पड़ती. दे ट्रेन देयर माइंड टू स्टे फोकस व्हेन एवरीथिंग इज अराउंड देम. और आज के टाइम पे तो इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया है कि भाई आपने कुछ गलत किया, कोई गलत मूव लिया और फिर पूरा इंटरनेट आपके पीछे पड़ जाता है. सो आई विल से कि इस मैच के प्रेशर को प्लेयर्स को बहुत इजीली समझाना बहुत डिफिकल्ट है. उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एंड कोई भी जीते कोई भी हारे, इट्स टोटली फाइन. बिकॉज कुछ लोग मैच देखते हैं और कुछ लोग मैच के साथ अपना ब्लड प्रेशर भी देखते हैं. सो आई विल से कि भाई आप मैच को एंजॉय कीजिए और आप मुझे अपने सैटरडे के प्लान जरूर बताइएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. नंबर इज 3311063. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

एक टाइम था जब हम बोलते थे कि यार बोर हो रहा हूँ, और फिर कुछ कर लेते थे, फ्रेंड्स को बुला लिया, छत पे चले गए, या फिर अंताक्षरी खेल ली, रैंडम बातें कर ली। और आज आई एम बोर्ड, फोन अनलॉक हुआ, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, और बस हम स्क्रॉलिंग करते रह जाते हैं। और 45 मिनट के बाद ये याद आता है कि यार मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने हमें एंटरटेनमेंट बहुत दे दिया, इसीलिए शायद ना बोर्डम टॉलरेट करना मतलब भुलाया ही नहीं दिया। सो कभी कभी बोर्डम भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं पर ब्लैंक स्पेस होता है जहां दिमाग में कुछ नया सोचा जा सकता है। सो विल डू अ फन एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार कर चुकी हूँ। जब आपके पास फोन नहीं होता, मेरा फोन जब भी बंद हो जाता है तो मैं चार्ज में लगा के छोड़ देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसे टच ही ना करूं। सो अगर आपका फोन आज आपको 6 घंटे के लिए कंप्लीटली दिया ही ना जाए, बैन कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे? एंड प्लीज सो जाएगा मत बोलेगा। सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान 3311063। क्योंकि अगर 6 घंटे के लिए मेरा फोन मुझसे दूर रहा तो मैं तो यही प्लान करूंगी कि चलो सो जाते हैं। सो यू टेल मी कि आप क्या करोगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपने कभी नोटिस किया है, आप एक गाना सुनते हो और सडनली आप प्रेजेंट में नहीं होते, आप किसी और जगह पर चले जाते हो, किसी कॉरिडोर में, कहीं स्कूल कॉलेज की किसी कैंटीन में, किसी पहली जॉब में, किसी सिटी के रोड पर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आपने बहुत टाइम से सोचा भी नहीं था। म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि सॉन्ग खत्म हो जाता है, मेमोरी नहीं होती, और कभी कभी लिरिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मोमेंट जिसमें आपने वो सॉन्ग पहली बार सुना था। सो ऑलिव रिचार्ज पर आज एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ आपसे, आपका वो वन सॉन्ग कौन सा है जो प्ले होते ही आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी में टेलीपोर्ट कर देता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम, यस ऑफकोर्स, ऑलिव रिचार्ज। सॉन्ग भेजिए, मेमोरी भी भेजिए, और आज देखते हैं कि रेडियो ऑलिव पर कितनी पुरानी यादें वापस आती हैं। नंबर सेम है 3311063, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम येस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज. और दिन का टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है समटाइम्स. आई फील जब भी हम लंच करते हैं तो उसके बाद ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में कि हमें आलस आने लगता है, नींद आने लगती है. सो उसको भगाने के लिए मैं आपके पास कुछ ज़बरदस्त बातें लेकर आई हूँ. सो अक्टूबर आ गया है. ऑफ कोर्स आज 3rd of October है, सैटरडे भी है, आप ऑफिस से भी फ्री हो चुके हैं या फिर आपकी छुट्टी थी. सो अक्टूबर के साथ एक और सीजन शुरू हो गया है विच इज मूवी सीजन. फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, कूलर इवनिंग्स और थिएटर्स के बाहर वो बोर्ड हाउसफुल वाला. अब दृश्यम 3 से मंथ की स्ट्रांग बिगनिंग तो हो चुकी है और अक्टूबर से दिसंबर तक यूजुअली सिनेमा लवर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग मंथ होते हैं. लेकिन एक डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुई है विच इज थिएटर वर्सेज OTT. थिएटर में पॉपकॉर्न और यू नो टाइम, तैयार होके जाना, ये सब तैयारी करनी पड़ती है और खूब सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन बिग स्क्रीन का मजा भी तो वही है, पर OTT में ब्लैंकेट के साथ AC चला के मस्त पॉज बटन फ्री और आप जितने चाहे ब्रेक ले सकते हैं. सो यू नो ये जो डिबेट है ना, ये इंटरनेट पे बहुत चलती है कि आपके लिए मूवी तब कंप्लीट होती है जब थिएटर में देखेंगे या फिर घर के सोफे पर आप उतना ही इंजॉय करते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑलिव रिचार्ज.

0: सो एक ना कन्फेशन करिए, कभी कभी मूवी देखने में 2 घंटे नहीं लगते, मूवी चूज करने में 2 घंटे लग जाते हैं। ट्रेलर देखा, IMDb पे रिव्यूज देखे, इंस्टाग्राम पर कमेंट्स पढ़े, फ्रेंड्स से पूछा, फिर पोस्टर देखा, फिर बोला कि चलो रहने दो, कुछ और देखते हैं, और फिर वही सर्च रिपीट पे चालू हो जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, हूं मुस्कान, और शो का नाम ऑल ओवर रिचार्ज। पर पता है आपको, मतलब हर किसी का एक ना सिलेक्शन फॉर्मूला होता है, आपको रिसर्च पे या फिर यू नो उस पे क्या बोलते हैं, उसके रिव्यूज पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कुछ ऐसी सीरीज हैं जिनके रिव्यूज अच्छे नहीं थे, बट आई रियली लाइक्ड इट। कुछ लोग एक्टर्स देखकर मूवी चूज करते हैं, कुछ डायरेक्टर देखकर, कुछ रिव्यू देखकर, कुछ सिर्फ ट्रेलर देख के पसंद कर लेते हैं, और कुछ लोग पोस्टर अच्छा है चलो देख लेते हैं। और मैं तो कभी कभी ये कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो उसमें रिव्यूज पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप चेक कर लो कि आपका इसमें कॉमेडी है, थ्रिलर है या फिर रोम कॉम है, बस उतना चेक कर लीजिए कि आपके मूड के हिसाब से वो है या नहीं। बट रिव्यूज नॉट ऑलवेज वर्क्स, यू नो। आप मूवी या सीरीज चूज करते वक्त सबसे पहले क्या देखते हो, स्टोरी, एक्टर्स, रिव्यूज, रेटिंग या फिर अपना मूड? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ.

सैटरडे है और आज बॉडी बोल रही है कि भाई थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन ब्रेन बोल रहा है कि यार कल से फिर काम पे जाना है, तो कल ईमेल के रिप्लाई करने हैं, नेक्स्ट वीक पूरा कैसा होगा, वो पेंडिंग चीजें, मतलब बॉडी वीकेंड पर है पर ब्रेन अभी भी ऑफिस में अटेंडेंस लगा रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल ऑफ रिचार्ज। भाई मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो वीकेंड पे भी पूरे हफ्ते का काम डिस्कस करते हैं, मतलब कैफे में बैठ के या कहीं पर मतलब जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार कितने डेडिकेटेड है टूवर्ड्स वर्क। हम में से बहुत लोग फिजिकली फ्री होते हैं बट मेंटली स्विच ऑफ नहीं कर पाते, और शायद रियल वीकेंड का मतलब सिर्फ ऑफिस से छुट्टी नहीं है भाई, माइंड को भी थोड़ी सी छुट्टी देनी पड़ती है। सो आज आप मुझे बताइए ऑल ऑफ रिचार्ज पर कि आपका वीकेंड एक्चुअली कब स्टार्ट होता है, मतलब थर्सडे को इवनिंग में या फिर फ्राइडे सुबह उठने के बाद, या फिर आपको सैटरडे से ही संडे की टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

अच्छा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, सब लोग पैनिक कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और एक पर्सन है जो क्वाइटली खड़ा है और ओके पहले ये करते हैं, बोलता है अपने मन में, हैव यू नोटिस्ड ऐसे लोगों को अपने आसपास, इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल में क्राइसिस हो, स्पोर्ट्स में फाइनल मोमेंट लेना हो, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, और एवरीबॉडी इज पैनिकिंग, और कोई एक पर्सन होता है जो बहुत आराम से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कुछ करने की कोशिश करता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। सो बेसिकली कुछ लोगों का दिमाग जैसे कहता है कि अभी पैनिक करने का टाइम नहीं है, और क्वेश्चन ये है कि प्रेशर में काम रहना या पर्सनालिटी की तरह एक काम करता है या एक स्किल जो प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती है, ये सोचना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रैक्टिस ही होती है कि भाई वो किसी भी सिचुएशन में काम रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी होती है काम रहने वाली। सो क्योंकि रियल लाइफ में प्रेशर तो सबकी लाइफ में आता ही है, वंस इन अ वाइल आप देखोगे कि कुछ ना कुछ होगा ही। डिफरेंस शायद इतना है कि कोई प्रेशर में प्रॉब्लम को बड़ा देखता है और कोई प्रॉब्लम को पीस में तोड़कर सॉल्व करने की कोशिश शुरू करता है। आप कौन सी पर्सनालिटी में आते हैं, क्राइसिस आती है पैनिक मोड या फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्वर मोड ऑन हो जाता है आपका, यू टेल मी। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं या फिर बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उनके बारे में भी बताइएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड।

Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

ओके, सो एक इंटरेस्टिंग इमेजिनरी सिचुएशन. आपको मिलते हैं 48 आवर्स, नो ऑफिस, नो पेंडिंग वर्क, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो ईमेल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को आपको डिस्टर्ब करने की परमिशन नहीं है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. अब आप कहोगे पिछले दो दिन से ऑलमोस्ट यही तो था, 48 आवर्स मिले भी थे लेकिन आपने क्या किया? बस आपको पता है. सो एक कंडीशन है इन सब में, नो, आपको कहीं जाना है, वेयर वुड यू गो? मतलब माउंटेन्स भी हो सकते हैं, बीचेस भी हो सकते हैं, आपका होम टाउन हो सकता है, किसी अननोन सिटी में आप जा सकते हो, कंट्री में जा सकते हो, या ऑनेस्टली होटल रूम में बंद रह के बस दो दिन अपने लिए निकाल सकते हो. सो यू नाउ यू टेल मी कि आप अगर 48 आवर्स मिलते हैं तो क्या करोगे? और एक ट्विस्ट है, वुड यू गो अलोन या फिर बिना किसी फ्रेंड के? दो दिन सर्वाइव करना डिफिकल्ट है आपके लिए. समटाइम्स वी से कि यार आई नीड अ ब्रेक, but perhaps what we really need is a little space where nobody needs anything from us. So you tell me, aapko 48 hours completely free mil jaye to aap kahan disappear hoge? You are listening Radio Olive, main hu Muskan aur ye hai Olive Recharge.

0: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज. भाई क्या जबरदस्त गाने चल रहे हैं. दिन का टाइम है, अब शाम होते होते मुझे ऐसा लगता है कि गाने भी जबरदस्त हो गए. चलिए थोड़ा सा पेट्रोल पंप से इमेजिनेशन तक जाते हैं. हर किसी के दिमाग में एक ड्रीम कार होती है, ठीक है. किसी को स्पोर्ट्स कार चाहिए, किसी को लग्जरी सेडान चाहिए, किसी को एकदम बड़ी सी SUV गाड़ी, और किसी के लिए विंटेज ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन फिर रियलिटी आती है, पार्किंग कहाँ करेंगे, ठीक है, माइलेज कितना होगा, सर्विस का बिल क्या होगा, और कतर की पार्किंग में कहीं दूर आपको अगर पार्किंग मिली, मतलब कतर में गर्मी बहुत होती है और पार्किंग जरूरी नहीं है कि एकदम पास में मिल जाए. सो बेसिकली हम सबके पास दो कार्स होती हैं, एक ड्रीम कार और एक प्रैक्टिकल कार. सो लेट्स रिमूव प्रैक्टिकलिटी फ्रॉम वन, मतलब फॉर एटलीस्ट वन मिनट. कोई मनी का इशू नहीं है, कोई पार्किंग का इशू नहीं है, कोई मेंटेनेंस का भी कोई इशू नहीं है. आपकी ड्रीम कार अब बताइए क्या होगी. और बोनस क्वेश्चन क्या है, आप उसमें सबसे पहले किसके साथ ड्राइव पर जाना चाहोगे. सो एवरीबडी हैज अ ड्रीम कार. मेरे पास ऐसी कोई कार नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि ये मेरी ड्रीम कार है, क्योंकि मुझे कभी भी गैजेट्स और कार्स का शौक रहा ही नहीं. मे बी शायद लड़कियों को उतना नहीं होता, या मे बी होता भी है तो मुझे नहीं है. सो यू टेल मी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो आप कौन सी कार खरीदना चाहोगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. कूल सॉन्ग.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

वीकेंड पर प्लान बनाना सबसे सिंपल काम लगता है, लेकिन फैमिली के साथ इंटरनेशनल लेवल नेगोशिएशन करना पड़ता है। एक पर्सन बोलता है कि यार मूवी देखने जाना, और स्पेशली जब दृश्यम आई हुई है, फिर दूसरा बोलता है कि यार रेस्टोरेंट चलते हैं, और तीसरा बोलता है यार मुझे तो शॉपिंग करनी है, और एक लेजेंडरी कैरेक्टर होता है जो बोलता है कि मुझे कुछ भी चलेगा, लेकिन जब फाइनल प्लान बनता है तो उसको कुछ भी नहीं चलता। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज। भाई सैटरडे का दिन है, आई नो बहुत ही कम टाइम बचा है, कल से फिर से हमारे जो ऑफिसेज है वो जाना पड़ेगा सबको, और इतने सारे काम, मेल्स, मीटिंग्स। तो हर फैमिली में ना एक प्लानर होता है, लास्ट मिनट पर्सन होता है, एक पर्सन होता है जो हर सजेशन रिजेक्ट करता रहता है, और एक जो बस बोलता है कि यार आप लोग डिसाइड कर लो। सो आज ऑलिव रिचार्ज में क्वेश्चन भी यही है कि आपके घर में वीकेंड का फाइनल डिसीजन कौन लेता है, और ऑनेस्टली बताएगा क्या वो जेन्युइनली डिसीजन मेकर है, या बस उससे लोग डरते हैं इसीलिए सब उसकी बात मान लेते हैं। यूजुअली ऐसा होता है यार, कपल्स में ना दो लोग होते हैं लेकिन चलती एक ही की है, क्योंकि दूसरे को लगता है कि यार अगर ये नहीं किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो यू टेल मी कि कौन लेता है आपके घर में ये सारे डिसीजंस। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज सेम 3311106 3। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ.

0: और अब ऑलिव रिचार्ज के इस सैटरडे को एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे जाने का टाइम हो गया वैसे, बट सोच रही हूँ कि भाई आज शाम हो गई है और ऑलमोस्ट यू नो मेरे तो प्लान्स बन भी गए हैं कि आपका परफेक्ट सैटरडे एक्चुअली कैसा दिखता है, यू टेल मी। सो किसी के लिए चाय, ब्रेकफास्ट और लॉन्ग स्लीप, किसी के लिए शॉपिंग और गुड फूड, किसी के लिए फ्रेंड्स, म्यूजिक और लॉन्ग ड्राइव, तो किसी के लिए मूवी, पॉपकॉर्न और ब्लैंकेट, और कुछ लोगों के लिए प्लीज मुझे किसी प्लान में मत डालो वाला कैरेक्टर होता है। तो मैं ना घर पर बहुत खुश हूँ ऐसा वो बोलते हैं, बट मैंने सोच लिया देखो मैं तो जा रही हूँ आज दृश्यम 3 देखने। और ऑनेस्टली परफेक्ट वीकेंड की डेफिनेशन किसी और की इंस्टाग्राम स्टोरी से डिसाइड नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर आपको सैटरडे को 3 घंटे सोफे पर बैठकर बुक पढ़ना अच्छा लगता है, दैट्स योर परफेक्ट सैटरडे, मतलब यही करो फिर आप। अगर आपको फैमिली के साथ लंच करना है तो आप वो करो, अगर आपको डिनर करना है अपने दोस्तों के साथ बैठ के तो आप वो करो, दैट्स ऑल्सो अ प्लान। सो आई विल से कि ऑलिव रिचार्ज पर आज मुझे बताइए कि आपके परफेक्ट सैटरडे का सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स क्या है, और शायद किसी और लिसनर को भी आपके आइडिया से अपना परफेक्ट वीकेंड मिल जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। यू नो लाइफ मस्त है लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: Abusudramol. Just spend 100 rial, get a free raffle coupon and win 2 Toyota Land Cruiser 2026 GXR.
1: Plus 1 lakh rial in cash prize and 10 iPhone 18 Pro Max Burgundy.
0: Offer valid till 16th March 2027.
1: Hurry to Abusudramol, grab your coupon and win your dream car.
0: Drive the dream only at Abusudramol.
2: Pay just 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
3: Now? We still have time for the festive season.
2: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
4: नमस्कार मैं हूँ गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
5: जियो बिंदास
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
11: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? क्या होता है कि जब दोस्त लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ टॉपिक निकल आते हैं और वो टॉपिक इतने ज्यादा लंबे चलते हैं कि पूछो मत. सो हमारा टॉपिक सडनली निकल आया कि हमने किसको कितने पैसे दिए हैं. और ठीक है, किसी की हेल्प करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जब कोई आपके पैसे लेके भूल जाता है और आपको इग्नोर करता है और ऐसे दिखाता है कि अरे मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं है यार, मतलब उसके लिए. सो या ये वाला टॉपिक था वो जो था ना पूरा एक दो घंटा चला और कुल मिला के हम सब जो थे ना उस ग्रुप में जो बैठे थे सबने भाई बहुत पैसे दे रखे हैं, लेकिन वही है कि लोग जो हैं वो भूल जाते हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यू नो कभी भी अगर आप किसी से हेल्प मांगे, जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, तो अगर आप किसी से हेल्प मांगे किसी चीज की, मनी की अगर स्पेसिफिकली, तो हर कोई जो है वो अपनी मेहनत से कमाता है, तो मेक श्योर कि आप जो है वो उसको वापस जरूर कर दीजिए, वरना आप भी इसी तरह के जो है वो डिस्कशन का पार्ट बनेंगे. और पता है अगर इन लोगों की वजह से जो लोग भूल जाते हैं, जो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वो जिनको एक्चुअली जरूरत होती है ना वो बेचारे उन पे फिर भरोसा उड़ जाता, उनको देने का वैसे मन नहीं करता है यार. सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास. अब आपको भी याद आ रहा होगा कि आपने कितने पैसे दिए, मार्केट में कितने पैसे फंसे हुए हैं आपके, 3311063 में बता दो यार.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हर कोई ना इस फिल्म के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे पास कल टाइम था तो मैंने ये फिल्म देख ली। फिल्म का नाम है बबीता सिंह रिपोर्टिंग। जी हाँ, एएसआई बबीता सिंह रिपोर्टिंग। सिमरन कौर आपके साथ, मैगा जी सुनियो के दादे की हाल चाल। सो बहुत लोगों ने तारीफ की थी, ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है। अगर आपको ऐसी फिल्में देखने में मजा आता है, पुलिस एंड ऑल और मिस्ट्री सॉल्व करना, ऐसे में मजा आता है, तो आपको बबीता सिंह रिपोर्टिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। और इसमें वरुण सोबती और निमिषा, जिन्होंने बेबी का किरदार जो है वो निभाया है, वरुण सोबती जो है बहुत ही कमाल के बंदे यार, बंसी का किरदार निभाया। दो इसमें वरुण सोबती का सिर्फ एक ही सीन है और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी चलती है, मैं आपको पूरा नहीं बताने वाली। लेकिन जिसने बेबी का किरदार निभाया, जो पुलिस बनी हुई है इसमें, है ना भाई, बबीता सिंह ने मतलब शी किल्ड इट ब्रो, मतलब मजा आ गया देख के। अगर आपको ऐसी फिल्म्स देखने का मजा आता है, क्राइम ड्रामा, देखिएगा यार मजा आ जाएगा। अमेज़न पे है ये फिल्म। सुंदरी रेडियो ऑलिव गुर के जरिए जियो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास अबू सिद्रा मॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम. सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री राफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR.
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी.
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027.
2: जल्दी आओ अबू सिद्रा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो.
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सिद्रा मॉल.
3: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8th November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and diamonds.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

क्रेजी हो गया यार। अवॉइड करते हो कि उनसे बात भी ना की जाए, उनसे मिला भी ना जाए, क्योंकि नेवर नो कि वो क्या ही करेंगे। बट एक दिन वो इतने ज्यादा अकेला फील कर रहे थे, इतने ज्यादा बोर हो गए थे, उन्होंने इन्वाइट किया बाहर डिनर के लिए। बट उन्होंने एक टेक्निक यूज की। अब मतलब ऐसा तो है नहीं कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम अपना एकदम बेस्ट साइड दिखाते हैं, नहीं। 2 घंटे उन्होंने नॉन स्टॉप अपनी लाइफ के अबाउट कंप्लेन की और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वो लड़की उनसे कभी नहीं मिली क्योंकि क्या होता है कि जो चेहरे हम देखते हैं ना स्क्रीन पर, हमको लगता है बस यही है, लेकिन सबकी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जब आपको पता लगता है, जब आप नजदीक जाते हो तो फिर आपको लगता है कि यार ये भी एक नॉर्मल ही इंसान है। तो उन्होंने इस तरीके से किया, वो लड़की उनसे कभी नहीं मिली। सो आपकी और हमारी ब्लॉक लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कभी कभी अनब्लॉक करते हैं। सो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर किसी ने आपको एक साल बाद रिप्लाई किया है ना, तो दे आर बोर्ड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका मैसेज आया, क्योंकि आपका मैसेज तो उन्होंने पहले दिन से देख लिया था यार। सिमरन कौर आपके साथ।

पीछे बावरा सा मन, बावरा सा मन। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

आज दिन में तो फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फिर भी बेटर है। सुना देते हैं सिमरन कौर आपके साथ। सो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 30 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी पहले के मुकाबले जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है, और वेदर जो है वो यू नो, जब मैं थर्सडे को आपसे बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी दिखा रहा था लेकिन फिर भी somehow थोड़ा ओके था वेदर। जब आप बाहर निकलते हो शाम को, आपको समझ लगता है कि अभी वेदर जो है चेंज हो रहा है। इनफैक्ट जब आप बहुत सुबह उठते हो तब भी आपको समझ लगता है, लेकिन अभी वो वाला मौसम नहीं आया यार कि गीजर ऑन कर ले अगर अर्ली मॉर्निंग नहाना है तो। जिस दिन वो आ गया ना वेदर, तब मजे आ जाएंगे यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो विंदास।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा वायरल थी भाई ये
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: वायरल ये बात है
0: और ये वाली बात को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक्ट्रेस जो है वो नुसरत भरूचा जिसके बारे में आपने सुना है राइट, सो उन बाली में थी वो किसी काम के सिलसिले में, वहां पर उनको स्पाइनल फ्रैक्चर जो है वो हो गया बाली में, सो काफी ज्यादा यू नो लॉन्ग टर्म जो है वो इंजरी उनको हुई है। अभी फिलहाल आज ही उनको एयरलिफ्ट किया गया है मुंबई, तो आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन यार वो वीडियोस वगैरह देख रही थी, अच्छा फील नहीं हो रहा। तो ये चीज देख के ये भी लगता है कि लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फॉर ग्रांटेड लाइफ को कभी मत लो। एंड जितना जैसा भी है लाइफ ना, मुझे लगता है कि सैड होने के हमारे पास 7500 कारण रहेंगे, तो एक कारण ये निकाल लीजिए जिससे आप स्माइल कर सकते हैं और बाकियों को स्माइल करवा सकते हैं। यार सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: सिद्रामॉल में आ गया है ड्राइव द ड्रीम। सिर्फ 100 रियाल खर्च करो, फ्री रैफल कूपन पाओ और जीतो दो टोयोटा लैंड क्रूजर 2026 GXR।
2: साथ में 1,00,000 रियाल कैश प्राइज और 10 आईफोन 18 प्रो मैक्स बर्गंडी भी।
1: ऑफर वैलिड टिल 16th मार्च 2027।
2: जल्दी आओ अबू सुधरा मॉल, कूपन लो और अपने ड्रीम कार जीतो।
1: ड्राइव द ड्रीम ओनली एट अबू सुधरा मॉल।
3: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: चलो फिर बताती हूँ एक और।
1: Gen Z decoded.
0: ऐसा ही है हम Gen Z लिंगों को करते हैं डिकोड। और चैट पे अगर आपको कोई Gen Z जो है वो लिख दे OFC, तो उसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको पता है, अरे ये तो ऑफिस होगा, शायद ऑफिस की शॉर्ट फॉर्म है। नहीं, OFC शॉर्ट फॉर्म है ऑफ कोर्स की। सो इस बड़े ऑफ कोर्स को ना लिखते हुए ये यूज किया जाता है OFC। आप भी कर सकते हो यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

आपसे एक रेडियो वाले बन के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। सिमरन गौरे आपके साथ। सो या रेडियो ऑलिव के नाम से बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बन गए हैं, क्योंकि आपको पता है स्कैम हर जगह चल रहा है तो लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको पता लगा कि यू नो रेडियो ऑलिव का पेज बना के वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं कि आपने रेडियो ऑलिव की तरफ से ये जीता है वो जीता है और आप हमें अपनी कार्ड की डिटेल्स दे दीजिए। लेट मी टेल यू डार्लिंग, हम आपसे कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगते हैं भाई साहब, कुछ नहीं ऐसा होता है। सो जब भी आपको कोई ऐसा मैसेज आए आप रिपोर्ट करिए और हमको मैसेज करिए, क्योंकि रेडियो ऑलिव वाला हमारा एक ही इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और उसके अलावा हमने अलग से कोई नहीं बनाया हुआ है। सो सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड सिर्फ रेडियो ऑलिव के पेजेस पे नहीं, और भी आपको बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आते होंगे, इस लिंक पे क्लिक करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ मत करिए यार, कोई आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, सलाह भी नहीं देता आजकल तो कोई। ठीक है, सिमरन गौरी आपके साथ जियो बिंदास।

नहीं अगर फैन हो तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कूली नंबर वन के बारे में। नाम लेते वो गाना दिमाग में आ जाता है, मैं तो रस्ते से जा रहा था, हुस्न है सुहाना, एक नंबर यार, मतलब कूली नंबर वन। सो यार इस फिल्म का टाइटल पहले कूली जो था वो रखा गया था, लेकिन कुछ इश्यूज थे टाइटल के साथ, लेकिन उसके बाद गोविंदा ने सजेस्ट किया कि भाई इस फिल्म का नाम जो है वो कूली नंबर वन रखते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। और जूही चावला को पहले ये करिश्मा कपूर वाला रोल जो था वो ऑफर किया गया था, फिर डेविड धवन एंड गोविंदा ने एक फिल्म का टाइटल जो था वो लॉन्च किया था, जो फिल्म बनी थी लंदन कूली, वो फिल्म कभी बनी नहीं, 1997 में लॉन्च किया था उन्होंने। एंड बात करें हुस्न है सुहाना, ये गाना जो है वो रिमिक्स किया गया था एल्बम में BMW 3 बैड मैड विक्ड बाय DJ जितेन। जी हाँ, और ये पहली बार था जब 1996 में सॉन्ग को रिमिक्स किया गया था। सो यार और भी बातें बताऊंगी इस फिल्म के बारे में, सुनते रहिए रेडियो ओलिव गोल्ड, कहते रहिए जियो विद अस।

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में बात कर रहे हैं। जबरदस्त फिल्म जिसके जबरदस्त गाने और बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्म कुली नंबर वन। जी हाँ, इसका मैं तो रस्ते से जा रहा था गाना, ह्यूज हिट था यार। और यू नो कुली नंबर वन जो थी वो फिल्म सेम टाइटल के साथ 2020 में बनी थी, जिसमें वरुण धवन एंड सारा अली खान ने हम सबको पता है कि यू नो काम किया था। और क्या हो गया कि जब ना पुराने गानों को नए तरीके से बनाया जाता है, रीमेक किया जाता है, तो जो पुरानी धुन है ना आप भूल जाते हो। अभी भी मेरे साथ ये होता है कि अभी जिस तरीके से इन गानों को रीमेक किया गया है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे लिरिक्स जो है वो चेंज हुआ है, आपके दिमाग में वही रह जाता, पुराने भूल जाते हो। और जब आप पुराना सुनते हो लगता है यार ये पुराना ही बेस्ट है यार। सो या अगर इस फिल्म के बारे में और अब बात करें, कुली नंबर के बाद वो नंबर वन वाला ट्रेंड ऐसा चला कि एक पूरी सीरीज ही आ गई यू नो नंबर वन पे, जैसे कि हीरो नंबर वन, आंटी नंबर वन, अनाड़ी नंबर वन। इन फिल्म में गोविंदा ने काम किया था, दो यू नो बीवी नंबर वन और एक और मैं फिल्म का नाम जो है भूल रही हूँ जिसमें सलमान खान ने जो था वो काम किया था, बाकी में सब ने गोविंदा ने यू नो काम किया था। आज तक भी गोविंदा का काम जो है वो लोग याद करते हैं, और आजकल किसी और ही रीजन की वजह से याद कर रहे हैं उनके घर के लड़ाई झगड़े जो सोशल मीडिया पर है यार। सिमरन कौर यार के साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: लाइफ में ना लोगों में बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे भी होते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है और किसी ने आपको इनवाइट किया है और आप वहां पे आ नहीं पाए, आपने आने के लिए मना कर दिया। और मैंने बहुत बार देखा कि लोगों का मुंह जो है वो बन जाता है, लोग जो है वो आपसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो आप कि लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप जो भी उनको ना आने का रीजन दे रहे हो वो बहाना ही है। मुझे लगता है कि दोस्ती में ऐसा नहीं होता, दोस्ती में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है कि किसी ने आपको इनवाइट किया, किसी ने आपको किसी चीज के लिए बुलाया और आपने उस चीज के लिए मना कर दिया। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, हर किसी की अपनी लाइफ होती है। जहां पर ये लोग समझने लगेंगे वहां पे यारियां दोस्तियां जो है वो कनेक्शंस जो है वो और भी ज्यादा इजी हो जाएंगे। सो या सिमरन गौरिया आपके साथ जियो बिंदास।

0: you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already. To aaj hi apna price locked gold secured kijiye with Malabar Golden Diamonds.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

बेबी डॉल नाम ले ले हो आपके रूल बता देती हूँ आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ नेम गेम एक ऐसा गेम है जहाँ पर नेम का ही गेम है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नाम अभी के अभी रेडियो पे सुने और मैं बोलूँ तो आपको मुझे व्हाट्सएप करके भेजना होगा 3311063 है मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जी 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करिए। चलिए नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। श्रुति, मोहन, सागर, संधु, नजीमुल्ला जी, अबरार जी, गौरी जी, सागर जी, जिशान जी, बिलाल जी, किसी ने हेलो दोहा लिख के भेज दिया। दोस्त हेलो दोहा नहीं करना है, अपना नाम लिख के भेजना है यार। नारायण जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, मलिक जी थैंक यू सो मच, आथर जी थैंक यू सो मच, सुभाशीष जी थैंक यू सो मच, सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, खालिद जी थैंक यू सो मच, लतीफ जी थैंक यू सो मच, फिलिप जी थैंक यू सो मच, इंसान जी ओके आपका नाम ही इंसान है जी ओके जी, इंसान जी का कोई नाम भी तो होगा दोस्तों ओके, अरुण जी थैंक यू सो मच, सविता जी थैंक यू सो मच, रिद्धिमा जी थैंक यू सो मच, आशिफ जी थैंक यू सो मच, अभिषेक जी थैंक यू सो मच, निहाल जी थैंक यू सो मच, सिन्हा साहब थैंक यू सो मच, सैमन जी थैंक यू सो मच, कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिए थैंक यू बोलो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के जरूर भेज दो। जी ओविंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: लेकिन मैं बहुत गंदा गाऊंगी लेकिन मैं वो बता रही हूँ कि अगर मेरे को फुटबॉल के बारे में अगर कुछ भी पता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अर्लिन हालैंड के बाद ही पता है, क्योंकि मैंने इनकी रील्स देखी, मैं इनकी फैंस बन गई. मैं क्या जी सोनियों के दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ. तो रिसेंटली जो अर्लिन हालैंड है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए. इन्होंने एक एयरलाइन कंपनी पे जो है वो केस कर दिया है, क्योंकि बिना उनके कंसेंट के उन्होंने एक एड पोस्ट की थी जिसमें उनकी एयरलाइन के ऊपर अर्लिन हालैंड के जो थे वो बाल थे, उनके जैसा पोनीटेल, उनके जैसा कलर बालों का. सो बिना उनके कंसेंट के ये हुआ है. दो उन्होंने बाद में एड डिलीट कर दी थी. लेकिन भाई साहब, आप उनका नाम लेके अपनी चीजों की प्रमोशन कर रहे हो, भाई वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसके लिए वो चार्ज करते हैं. कंसेंट लेना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप किसी का कुछ भी यूज कर रहे हो तो. सो यार, इसकी वजह से ये दिक्कत आ गई है. सिमरन कौर आपके साथ, जियो विद
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

भाई साहब क्या दिमाग। आपके साथ एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यूपी के एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो पावर कट लग गया। अब वो तीन दिन आई गेस दो दिन जो था वो पावर कट लगा रहा, और क्योंकि हैवी रेन थी बहुत ज्यादा, तो मतलब लड़कों ने क्या किया, एक जनरेटर को खरीदा और उन्होंने 30 रुपीज पर आर फोन चार्ज करने का लिया, और उन्होंने उसमें से 1.6 लाख जो है कमा लिए। माय गॉड, ऐसा दिमाग मेरा क्यों नहीं चलता है यार। सही में कमी है यार, मतलब कमी नहीं है, जिनके पास टैलेंट है भाई सब। पता है ना, फोन जो है वो सबकी जरूरत है, सब कुछ चलेगा यार, गर्मी चलेगी सब चलेगा, सर्दी चलेगी, फोन आपके हाथ में होना चाहिए, फोन चार्ज होना चाहिए। सही है यार, सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहिए।

0: रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: Association with Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

दोस्तों कितनी सारी बातें करनी है मैंने और, लेकिन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम ही है यार। बट सिमरन वादा जरूर करती है कि कल शाम को इंशाल्लाह फिर से 5 बजे होती है आपसे मुलाकात और भी बातें करेंगे और कुछ नहीं और कल बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए जो है वो ओवर थिंकिंग मत करिएगा, खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: बहुत काम है।
1: तो सुनो,
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए।
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडी।
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: okay, तुम तो
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।